ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई पुन राशस का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन बिष्ट गगन ते पई सब हिन्यान बधाई दई धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीबन वाजा अखल पवन के सृजनहारी दास जान मोहे ढ्यो उबारी कवि उबाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दा रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहा हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबा तुम काव हो आप हाथ दा मोहे बचाव हो सुखी बसा मोरो परवारा सेवक सिख सबा करतारा मोर अच्छा निज कर दा करिया सब बैरन को आ संगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहा प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारी तारिया है चुन चुन सत्र हमारी मारिया आप हाथ दा मुझा बरिया मरण काल का त्रास निवरिया हु जो सदा हमारी पच्छा सिरियस तु जो करियो रच्छा राख ले हो मोहि राखन हारी साहिब सुन सहाय प्यारी दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छने उपजायो आदंत एका अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को परमो बद कियो घट घट के अंतर की जान।

तिहो बचाई। कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। चिल बिग सकल देहे को हरता, दुष्ट दोखियन कौछा करता। श्री अस्तु।

ब्रह्म ज्ञानी का यो गुनाओ नानक जीव पाव का सह सुभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश जैसे तरु प्रकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान।

ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समा, ब्रह्म ज्ञानी पारोपकार महा, ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी लहता तो बंदा, ब्रह्म ज्ञानी के हुए सो फला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल धार नान, ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सग जागत, ब्रह्म ज्ञानी आ बहुत त्यागत, ब्रह्म

नमो इष्टे इष्टे नम तंत्र तंत्रंग सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी नूपे रूपे समस्तल निवासी सदा सचिदा बुद्धा विरद कर्ता दौर्दर्दंग अगंगोहर्ता परम परम परमेश्वरंग पुरुषपालंग सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग शेदी पेदी नामंग कामंग समस्त पराजी समस्तस्ततामंग तेरा जोर चाचरी शांद जले हैं थले हैं पीत हैं पे हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं बेस हैं भुजंग प्रयात शांत गादे अपादे नंदी स्वरूपे नम सर्वाने समस्ती निधाने नमस्तं नरनाथे नमस्तं परमाथे नमस्तं गंजे नमस्तं पंजे नमस्तं काले नमस्तं पाले नम सर्वदेशे नम सर्वभेशे नम राजराजे नम साजसाजे नमो साख साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सुख सुखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्वरंगे तरभंगी नंगे नमो जीव जीवन नमो बीज बीजे खिजे बीजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे उगर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा सिदंग नवासी जरपट छंद वै प्रसाद मृत कर्मे मृत धर्मे खल जोगे चल भोगे

भगवती शांत प्रसाद करते के अशिष देश के पिज पेसा के गंज करम के भन परम के अभिज लोक है के दुध सुख है के दूध बरण है के भूत करण है के राजंग प्रभा है के तरमंग तुजा है के अशोक बरण है के सर्वा परण है के जगत अंकृति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपनूप।

चंद्र के सरबंक ली मैं के परमंग पही मैं के अकल अला मैं के साहब कला मैं के हुसन अल वजू हैं दमामल वजू हैं मेसल सलाम है सलीखत मदा मैं गनीमल सिकस्ता है गरीबल परस्ता है।

जापन है। आकलन कृत हैं, सर्वा कृत हैं, कर्ता कर हैं, हर्ता हर हैं, परमात्म हैं, सर्वात्म हैं, आत्म वस हैं, जस के जस हैं, भुजंग प्रयात शांत नमो, सूर्य सूर्य नमो, चंद्र चंद्रे नमो, राज राजे नमो, इंद्र इंद्रे नमो, अंधकारे नमो, तेज तेजे

अनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंबे भूते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंबे भूते। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद उपाशाही दसवीं दा प्रसाद सोई है श्रावण सो दसमु सुधान के देख फिर कर जोग ज्योति के सूर सुरार धन सुध सुधा देख संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत गौ न देखे प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूँ दे कृति बिने कृति के माते मतांग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे गुड़ तुरंग कुरंग से गुदत पौन के गौन को जात नवारे।

लुवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाजक नेक सुग दवैया दानव देव निंदन साचर भूत भेख भवान जपेंगे जीव जिते चल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाव थपेंगे था।

चला ना ही तिस नाल क्यों जितलाई है, ऐसा काम उले ना की जय जतन पछोताई है। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरा नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सर संभाले। अगम गोचरा तेरा अंत ना पाया, अंत ना पाया किना तेरा, अपना आप तू जान है जी जन सब खेल तेरा, क्या को आख बखाणा।

जे साधु सिमरंथ जी की ताबत मिटावे, जे साधु सिमरंथ जी की ताबत मिटावे, जे साधु सिमरंथ।

नानक साचा सर्ब दातार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी सुखमणी महला पंजवां श्लोक एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आदि गुर ए नमः, जुगाद गुर ए नमः, सतगुर हे नमः, श्री गुरुदेव हे नमः। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहि मिटावो। सिमरो जास बसंबर एकै, नाम जपत गणत अनेकै। वेद पुराण सिमरत सुधाकिर, कीने राम नाम एक आखिर। किनका एक जिस जीव सावै, ताकि मेहमा गनी न आवै। कांखी एक अदरस तुहारू, नानक गुण संग मोहे उदारू। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जन कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अनदिन जागै। प्रभ कै सिमरन भव न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ कै सिमरन साध कै सांग, सरबन दान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नाव निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जपता पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन होय सो भला, प्रभ कै सिमरन सो फल फला। से सिमरै जनाब समराए, नानक ताकै लागो पाए। प्रभ कै सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन तरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बूझै, प्रभ कै सिमरन सब कै सूझै। प्रभ कै सिमरन नाहीं जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत माए समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरै से तनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते। प्रभ को सिमरै से जन प्रवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभु को सिमरै से बेमुहताजे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे। प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा बनासी। सिमरन ते लागे जने आप दयाला, नानक जन की मंगर वाला। प्रभु को सिमरै से परोपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी। प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै। प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल लीता। प्रभु को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे। संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभु कै सिमरन कारज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबहु न झूरे। प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहल समानी। प्रभु कै सिमरन निचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन कांत न पार। सिमरै से जन जन को प्रमया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए। हर सिमरन पहे से जति दाते, हर सिमरन नीद चह कुंड जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना।

सोह कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोरी बंधन पर हर का नाम जपत निस्तर अनक माया रंग तिखना बुझावै हर का नाम जपत्या कावै जे मार ग्यो जाते अकेला ते हर नाम संग हो सुहेला ऐसा नाम मन सदां ते आईए नानक गुरमुख परमगत पाईए छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपतै पार पराही अनक बिघन जह आए संघार हर का नाम तत्काल उदार अनक जौन जन मैं मर जाम नाम जपत पावै बिश्राम हो मैला मलक बूना धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइय साध कै संग जे मार के गने जाहे न कोसा हर का नाम मुहा संग तोसा जे पिंड महान गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा को ना सजानू हर का नाम ते नाल पछानू जय महा भयान तपत भव काम तै हर के नाम की तुम ऊपर शाम जहां त्रिखा मन तुझ आक रखै तह नानक हर हर मृत बरखै भगत जना की बरतन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर का नाम दरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कुमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नौदान।

अनक जतन कर त्रिसन्ना त्रापै पेख अनेक गन्नी बुझै कोट उपाव दरगैनी सिजै छूट सनाही उपयाल मोह व्यापै माया जाल अवर करतूत सगली जमड़ा ने गोविंद भजन बिन दिल नहीं मानै हर का नाम जब दुख जाए नानक बोलै सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगै साल जना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै जे को अपनी शोभा लूरै सा संग होमै शूरै जे को जन मरण ते डरै साल जना की सरनी परै जे जन को प्रभु दर्स पिया सा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान सा संग जाका मिटै अभिमान आपस को जो जाने नीचा सौ गुनिया सब दे ऊंचा जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम दिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना देखै सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन समदृष्टिता नानक पा पुनि लेपा निर्धन को धन तेरो नाव निथावे को नाम तेरा था निमाने को ब्रव तेरो मान सगल कटा को देवो दान करन करावन हर स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे अपन संग आप प्रभराते तुमरी उस्तव तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम उदम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जासून रसन बखानी सगल थान दे ओ उदम थान नानक जेहे घट वसै हर नाम सलोक

ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन ब्रह्मानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी का हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है।

पसरे वाप हो अनंत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश।

कई कोट नाम गुण गावे है, आत्मरस को सह समावे है, अपने जन को सा सा समारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे श्लोक। करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाहीं कोय, नानक तिस बलिहारन, जल थल महील सोए अष्टपदी। करण करावन करना जोग, जो तिस पावे सोई होग, खिन में थाप्यो थापनहारा, अंत नहीं किश पारा बारा, हुक्मे तार तर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै।

निर्मल सोए। जब लग जाने मुझ ते कश होए, तब इस कौ सुख नाहीं कोए। जब इह जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब धारे को बैरी मीत, तब लग नेह चल नाहीं चीत। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय देस जाए। प्रभ कृपा ते बंधन तुटै, गुर प्रसाद नानक हाँ छुटै।

दुखी बिगड़ रूप हो जाए। संत के दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है। संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजा ना आसा। संत का दुखी उठ चले निराशा।